पादशाह तो सवाल कीते, पादशाह तुसीं अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज क्यों नहीं कीती? कहन लगे फर्क है, उत्थे रब दी कथा है, इत्थे मैं अपनी कथा कह बैठा, इसलिए अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं की। पातशाह तुहानू की लोड़ पै गई अपनी कथा सुनाण दी? कहन लगे लोड़ सी, जिस वेले तुलसीदास किसे प्यार विच आया, श्री राम नू भगवान राम कह बैठा, सूरदास बहुत ही सत्कार विच आ गया ते कृष्ण नू भगवान बना बैठा, कोई ऐसा सिख उठ के मैनू भगवान ना कह बैठे, वाहगुरु ना कह बैठे, इसलिए मैनू अपनी कथा कहनी पै रही। पर जे पातशाह तुहाडे गुणां नू तुहाडी महिमा नू वेख के कोई कह बैठे भई तू ते रब इको ही हो, तू ही रब है, ते फिर की होवेगा? हजूर ने बचन कीता

की पावन पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया। जिस शब्द अंदर सतगुरु गुरु नानक पातशाह सानों कलयुग जीवन उपदेश देंदे हुए एक गल समझांदे, असी चंगे क्यों नहीं। कदी किसी मनुख ने अपने आप नूं भी माड़ा आखिया, वो ते कहिंदा मेरे वर्गा चंगा है ही कोई नहीं, जिन्ना मैं सियाणा, जिन्ना मैं सुगड़, जिन्ना मैं गुणवान, जिन्ना मैं ज्ञानी, मेरे वर्गा कोई संसार विच नहीं। पर साहिब कहिंदे ने भाई चंगा किसे चंगयाई नाल हुंदा, शुभ गुणा दे नाल हुंदा है। अपने आप चंगे बन बहना उसनू चंगा नहीं आखदे। इधर पटबाणी विच कहिंदे ने चंगे किवें हो सकने आ जे साडे अंदर मालक दी समझ मुताबक गुण होण। ते जे हे परमात्मा तेरे शुभ गुण साडे अंदर एक भी नहीं ते असी अपने आप नूं चंगे किवें खवा सकने। पट तां ऐसा कहिंदे ने हम अवगुण भरे एक गुण नाई। हे मेरे पातशाह, मैं ते अवगुणा दा भरिया होया, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि चंगा ते मैं गुण नाल होना है ना। पर जे मेरे अंदर एक भी गुण ना होवे ते मैं चंगा किवें हो सकदा।

सब तो वड्डा अवगुण की है कि मैं अमृत नूं छड़ के बिख खाई जा रहा। हे परमात्मा, जो तू अमृत की दात दित्ती मैं वह भी हासिल नहीं की, केवल बिख चखी जा रहा। एदू वड्डा होर अवगुण केड़ा हो सकता है? फिर कहिंदे ने माया मोह परम पै भुले, माया दे मोह विच पै के परमा विच मैं भुलिया फिरदा हां। माया मोह परम पै भुले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। सुत कहिंदे ने पुत्र, दारा कहिंदे ने इस्त्री। हे मेरे मालक, मैं तेरे नालों प्रीत तोड़ के, तेरे नालों प्यार छड़ के, मैं अपना प्यार अपने पुत्र तियां नाल ते घर वालियां नाल लाया होए। फिर कहिंदे नी

कंचन नारी में जियो लोबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर वो गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जरा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना, ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इना विषय विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा सी तेनू भुलाया होया।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर कृपा बख्श। तुसी करो कृपा साडे अवगुण बख्श के, ते सानू अपनी चरणा नाल ला लो। कर कृपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां।

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल टंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कुल कोई टंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनू अपने बस कर ला, मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं है।

हे माधव, माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे। सत्संग तुम ध्यान देना, हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ, सतगुर कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंड।

करेंगे। हम पापी तुम पाप खंडन। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं? क्योंकि असी पाप करने वाले हैं, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले हैं। किवें चंगे हो गए? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना। निको ठाकर दे सा सामने वालों चंगा तू जिहड़ा साडे अवगणा का भी नाश करी जाना। हम ऐसे तू ऐसा आओगे ख्याल करिए क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है। बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है। गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे किते मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुरु ख्याल देंदे हुए कह रहे ने

तुम समसर नाही दयाल मोहे समसर पापी। भगत कबीर जी कहते हैं हे मेरे माधो असी के हो जाए ते आप के हो जाए। कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी तुम समसर नाही दयाल। समसर कहते ने तेरे वर्गा, तेरे वर्गा कोई दयालु नहीं है कृपालु नहीं है। मोहे समसर पापी ते मेरे वर्गा कोई पापी नहीं है। तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं मेरे वर्गा पापी कोई नहीं ते मेरे वर्गे अवगुण हारे दे ते अवगुण आप ही बख्श सकते हो।

मैं अवगुण हारा ते आप उपकारी हो, मैं अवगुण करी जाना आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है,

हे रमैया मैं तेरा बारक हां काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है, भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा की याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल इह कह सके कि मैं तेरा बारक हां ते अपने बारक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बारक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे को अवगुण बख्शा लेने। इसलिए भाई आओ आप उस मालिक अगे इस तरह बेनती करिए, गोबिंद हम ऐसे

एक खिन लेना हर को नाम गोविंद, हम ऐसे अपराधी। कैसा अपराध है, रात पैंदी है सौ जाने हैं, दिन चढ़ दे उठ के कमा कारण तुर पैने हैं, ते परमात्मा दा नाम कदो जपांगे। रात जो सोवे दिन करे काम, एक खिन लेना हर को नाम, एक खिन मात्र भी तू परमात्मा दा नाम नहीं जपदा, तेरे अंदर गुण केड़ा होए।

आंख सुनाए पूछे लाहे विश्वास। अकृत कण दी तस्वीर की है, मद विच रिद्दा पाए के कुत्ते दा मास। कहिंदे ने कुत्ते दा मास, मद कहिंदे ने शराब विच रिने, तरिया मानस कोपरी मनुख दी कोपरी विच उसनू रिने। तिस मंदी वास रत्तू भरिया कपड़ा लहू दा पड़िया, लाल रंग दा कपड़ा। इस नाल इसनू ढक के कहिंदे ने एक बीबी ले जा रही है, ढक ले चली चूड़ी कल भोग बिलास। आख सुनाए पुछिया लाहे विश्वास, किसी ने जांदियां पुछ कर ली बीबी कुत्ते दा मास, शराब दे विच रिन्या मनुख दी कोपरी विच बनिया होया, इनू तू टक के क्यों ले जा रही है, इनू किसे वेखना है। कहिंदे ने बीबी ने जवाब बड़े कमाल दा दिता, कहन लगी वीरा सुन, नदरी पवे अकिरत कन मत होए विनाश। मैं टक के वीरा इसलिए ले जा रही हां किते अकिरत कन दी नदर ना पै जाए। अकिरत कान दी नदर पै गई ए भी भोजन व्यर्था चला जाएगा। सो अकिरत कान दी नदर भी इन्नी भैड़ी हुंदी है, कदी पत्थर ते भी पा देवे ना ओनू भी दुफाड़ करके रख देंदी है। मैं ते समझना अकिरत कान दी नदर तो भी बच के रहना चाहिदा है। बचो अड विश्वास घातियां कोलों, अकिरत कणा कोलों, जेडे किसे दा मनुख दा कीता नहीं जानदे ओना मालिक दा कीता की जानना। अरदास करिए विश्वास काती अकिरत कण मैं कोई ना रखंदा, पैसा भाई गुरदास जी कहिंदे।

नाम तो बिना भाई तेरा क्यों छुटकारा हो सकता है। ते नाम मिलता कितों है अख्या जपन वालियां की संगत विच तेनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां की संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा। साच नाम आधार जिन्हां नाम का आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री इस लई हजूर बख्शिश करते हैं कि यह गुरु की शरण विचों मिल सकता है। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहंदे ने घड़े नूं आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकता आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसे तरह रुड़ जाएगा। कि कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लख रहाओ जात मह जोत जोत में जाता अकल कला पर पूरया तो सच्चा साहिब से सवाल्यो जिन की तीसो पार पया।

अमृत, अमृत की है, अमृत है परमेश्वर दा नाम, अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तैयार करके सिखा नु पियाया ते खालसा पंथ साजिया। पर इस अमृत की कहानी बड़ी लंबी, चार युग होए ने, सात युग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हर युग विच अमृत पीता गया, पर अमृत पीण दा टंग वखरा, अमृत लभण दा टंग वखरा। एक गल होर, कुछ लोकां अमृत पीता पहलियां युगां विच अमर होण वास्ते कि सानू मौत ना आवे, कोई दुख लागे ना आवे, अपने वास्ते अमृत पीता अपने भले वास्ते। पर जेड़ा अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखा नु पियाया, ओ अमृत आपा वारन वास्ते, जुलम खत्म करन वास्ते, मजलूमा दी रखिया करन वास्ते। तो आओ विचार करिए, पहला सतयुग बारे के सतयुग विच ए अमृत किस तरह मिलिया ते किस तरह पीता गया। पहला हिंदू मत अनुसार कथा, उस तो बाद गुरमत अनुसार।

एक किस्सा तरती तेन से पानी मन्या गया समुंदर बड़ा वटे एक वरी देवतिया ने विचार की थी देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचों चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी सलाह की थी सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहिदी रस्सा चाहिदा पर समुंदर अथाह है एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी ता सारिया देवतियां सलाह करके मंदरा चल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया शेष नाग नू उस पर्वत दे द्वाले लपेटिया गया एक पासियों उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासियों दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पास से दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले एक वरी साप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने साप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी उस समुंदर दे विच इस तरह घूमन लग पिया जिस तरह चाटी दे विच मदानी घूमदी देवते उस शेषनाग नू अपने वाल खिचदे ने दैंत अपने वाल खिचदे ने ते पर्वत जिहड़ा है उस समुंदर दे विच घूम रहे है बड़ियां भयानक लहरां उठियां जदों लहरां उठियां ते सारियां तू पहला जहर निकलिया जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुट देने ता नुकसान बड़ा हुंदा है ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया इस करके शिवजी भगवान नू लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करदे जहर तों बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां लक्ष्मी नू विष्णु भगवान जी ने अपना लिया पारजात दरखत नू इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया जिते अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ लग गया

लभते कुछ नहीं। श्री रामचंद्र दे छड़े हुए घोड़े नु फड़ लिया। पिछे सेना सी, सेनापति ने कहा बच्चियो घोड़ा छड़ दियो। पर दोनों भरा कहन लगे छत्री हां इस तरह दे घोड़ा छड़ दे नहीं, जे हिम्मत है ते छड़ा लो। लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई विच दोनों भरावां ने सेना दा बुरी तरह नाश कीता। इथों तक हनुमान नू भी दरख्त दे नाल बन दिता। लक्ष्मण वर्गे योधे भी दोनों भरावां ते काबू ना पा सके। आखिर श्री रामचंद्र नू आप लड़न वास्ते आना पिया। इस लड़ाई दे विच श्री रामचंद्र मुर्शद हो गए। ता उस वक्त सीता जी नू पता लगा। उन्हें आके क्या बच्चियो एहो ही तुहाडे पिता श्री रामचंद्र हैं। उदों पता लगा कि श्री रामचंद्र एहो ही ने जिहड़े साडे पिता ने। ता लिखिया उस वक्त अमृत दा कड़ा फिर दोबारा मंगाया गया। उस अमृत दे नाल श्री रामचंद्र अते बाकियां नू सुरत विच लियांदा। जेड़ा अमृत बचिया जगह पुट के उस नू दब दिता गया। त्रेते विच ए अमृत इस तरह प्राप्त कीता। ते लिखिया है कि जिस जगह ए अमृत दा कड़ा दबिया गया कलयुग दे विच ए जगह प्रगट हुई। इस जगह धन गुरु नानक साहब ने भी आके चरण पाए और इस जगह नू अजकल दरबार साहब श्री अमृतसर करके भी याद किया जाता है।

द्वापर युग बीत गया, कलयुग आया, धन गुरु नानक साहब का अवतार होया। आओ हुण गुरमत अनुसार अमृत बारे विचार कर दें, क्योंकि हर पक्ष देख के फिर चलना चाहिए तो आनंद और समझ पूरी आती है। धन गुरु नानक साहब का अवतार होया सुल्तानपुर लोधी। धन गुरु नानक साहब जी ने जदों रहना शुरू किया रोज अमृत वेले नदी ते इशनान करन जांदे ने, अज भी इशनान करन गए। सेवक खलोता है देख रहे है, अचानक इशनान करदे हैं। धन गुरु नानक साहब ने पानी दे विच ऐसी झुब्बी लाई कि दोबारा उत्ते नहीं आए। सारे सुल्तानपुर लोधी खबर फैल गई कि गुरु नानक डुब गए, पर गुरु नानक साहब दे वड्डे भैन जी बेबे नानकी वो कहन लगे मेरा वीर डुबिया नहीं, क्योंकि मेरा वीर ते डुबदिया नूं तारण वास्ते आया। दूसरे पासे धन गुरु नानक साहब चुभी मारी पानी विच पहुंच गए सचखंड। अकाल पुरख दे सामने खलो के हाथ जोड़े ते नाले ए शब्द उचारिया।

एक गुफा च बह जा। करोड़ां करोड़ां साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सौवा ना। इन्ना तेरा नाम जपा पर अकाल पुरख तेरे नाम दी कीमत

सुत कहते ने पुत्र धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नु कहते ने अकाल पुरख तुसा क्या सी मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंथ प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पहले जन्म का नाम दुष्ट दमन सी ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे हैं एक नवा पंथ चलाने वास्ते ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नू दया कहो जिया मैं पंथ चलाव मैं अपना सुत तो ही निवाजा पंथ पैचुर कर बे को साजा अकाल पुरख दे चरणा विच बेनती कीती गुरु साहबां दी अखां बंद ने अखां दे सामने एक सूरत आई लत्तां पतलियां पर भार सहण वालियां चौड़ी छाती मत्था चमकदा अखां विच नाम दी लाली बोल फरकदे ने सोहना दाड़ा सिर ते दस्तार हाथ कड़ा गात्रे कृपान तेड़ कछहरा सोहनी सूरत देखी तो गुरु साहब जी पुछदे ने ऐ सूरत तू कौन है उस सूरत बोली मैं खालसा गुरु साहब जी पुछदे ने तू कित्थों आई है ओ सूरत बोली मैं तुहाडे हिरदे विचों आई हाँ मैनू हुण तुसी बाहर प्रगट करो जो चाहिदा सी ओ मिल गया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वापस आनंदपुर साहब आ गए पर सोचन लगे ये सूरत बड़ी सोहनी पर किनू दया मसंदा पंडता साधुआ सन्यासिया किनू दया इस सूरत क्योंकि जे आप दुध लैन जाना हो ते पांडे नू चंगी तरह साफ करके ले जाने हैं जे दुध वास्ते पांडा साफ चाहिए ते अमृत वास्ते भी तो मन का पांडा सोहना ते साफ चाहिए।

आनंदपुर साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दा दरबार सजे है। एक पासे माइया बैठिया ने, एक पासे पुरुष बैठे ने। सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होए है, कीर्तन हो रहे। अचानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अखां बंद कीतियां सन, अखां खोलियां। एक पहरेदार सिख नूं कोल बुलाया ते कहन लगे, सिखा कुछ दूर दरखत है, उस दरखत दे थले एक सिख बैठा रो रहे है, जाओ उसनू प्यार नाल साडे कोल लै आ। पहरेदार चला गया। दूर दरखत थले सचमुच एक सिख बैठा रो रहे है, अखां बंद नहीं, हाथ जुड़े हुए नहीं, पर बंद अखां विचों अथरू पै गिरदे ने। ते नाले कह रहे है, ऐ सच्चे पातशाह, मैं की गुनाह कीता है, की पाप कीता है, काबल तू आया, तेरे दरबार पहुंच गया, पर तेरे दर्शन करन दा मैनु हुकम नहीं। पहरेदार सिख पहला ते सुनदा रहा, फिर मोढ़ा फड़ के हिलाया ते नाले कहा, सिखा तू कोई पाप नहीं कीता, तेनु ते आप कलगियां वाले ने याद कीता। उससे कुठिया अखां पूंजदा होया पहरेदार दे नाल तुर पिया। जदों दरबार विच दाखल होण लगा, इत्थे भी इक पहरेदार खलोता सी। उसने कहा, ए काबल वाला सिख दरबार विच नहीं जा सकदा। नाल आया पहरेदार कहन लगा, ए दरबार क्यों नहीं जा सकदा? तां खलोता पहरेदार कहन लगा, जेड़ा वड्डा मसंद है चेतो, ओदा हुक्म है इस काबल वाले सिख नूं दरबार विच नहीं जान देना। ते सुन के नाल आया पहरेदार कहन लगा, जेड़ा चेतो मसंद दा मालिक है कलगियां वाला, मैनूं ओदा हुक्म होया। ये सुन के पहला पहरेदार परां हट गया। सिख दे हाथ जुड़े ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने पहुंचे, दर्शन कीते, अखां विचों अथरू वगन लग पए। तीन दिन हो गए सन रोंदे हां, अरदासां करदे हां, गुरु दे दर्शन कीते, अपना सिर चरना ते रख दिता। ते कलगीधर पातशाह सिर ते प्यार नाल हाथ फेरदे ने, ते नाले बड़े प्यार दे नाल कहन लगे, सिखा काबल तू आया, तीन दिन हो गए ने तैनू रोंदे हां, सानू पता है, सिखा साडे नाल बड़ा प्यार करना है, पर साडे वास्ते बेटा की लैके आए। साध संगत, गुरु किसी चीज का भुखा नहीं, गुरु ने बेटा क्यों मंगी, ए ते गुरु का कौतुक है। कहन लगे, सिखा साडे वास्ते बेटा की लियांदी। सिख हाथ जोड़ के कहन लगा, पातशाह मैं की देन जूगा, सब कुछ आपदा है, मैं सुनियारा वा, हाथियां दे दंद दा एक कंगन जिदे विच हीरे जड़े हुए सन, मैं आपदे वड्डे मसंद चेतो नूं उदों दिता सी जदों काबल गया सी। दूसरा कंगन जिदे विच हीरे जड़े ने मैं लैके आया सां, ओ कंगन मैं चेतो मसंद नूं दे दिता,
क्योंकि चेतो ने कहा सी कि सिखा तेरे नाल गुरु साहब जी बड़े नाराज ने, तू दरबार विच ना जाई। ए सुन के गुरु साहबा ने अपने दोनों हाथ अगे कर दिते ते नाले कहन लगे सिखा ऐ देख मेरे हाथ ते खाली ने, तेरे कंगन मेरे कोल नहीं आए। सिख ने कहा पातशाह मैं ता चेतो मसंद नू दित्ते सन, ते चेतो मसंद संगत च बैठा सी, उठ के खड़ा हो गया। कहन लगा पातशाह ये झूठ बोलदा है, ये कंगाल कंगन कितों दे सकदा है।

सिंह बुलाए ते क्या जाओ चेतो दे कर, चेतो दे करो। सिंह दूसरा कंगन भी कढ लिया है। सिख दी भावना पूरी हो गई पर कलगीधर पातशाह दा मन इन्हां मसंदा वालों उचाट हो गया कि ये जड़े मसंद ने ये अमृत छकन दे।

पंडितों की प्रीख्या ले दो लंगर लाए, एक विच मास बनाया, एक लंगर सादा बनाया। ते साहबा ने कहा जड़ा मास वाला लंगर छकेगा उन्हों बहुत ही माया मिलेगी, जड़ा सादा लंगर छकेगा उन्हों घट माया मिलेगी। मास खाण दे नाल सोने दिया मोहरां ज्यादा मिलनिया ने, ये सोच के बहुते मास वाले पासे बैठ गए, सादे पासे घट बैठे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिन्हां ने सादा लंगर खाधा उन्हां पंडितां नूं चोखी माया दित्ती, ते जिन्हां ने मास वाला लंगर खाधा जिन्नी कही सी उन्नी उन्नी माया उन्हां नूं दित्ती। पर इन्हां वल्लों भी मन उदास हो गया कि जिहड़ा आदमी माया बदले अपने धर्म ते पक्का नहीं रह सकदा, ओ जुल्म दा

साधु सन्यासी सारियां दी प्रीख्या लई सारियां पासियां तो नाराज होके हुण गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने साध संगत ते अपनी निगाह टिकाई।

उस वेले वो अकाल पुरख किसे ना किसे नु इस संसार ते भेजता। कलयुग विच जद जुलम और पापा दी अत हुई धरती ने पुकार की थी, ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया। इस संसार विच तन गुरु नानक साहब प्रगट होए और सब तो वड़ा काम यह कीता, चार वर्ण खत्री ब्राह्मण शूद वैस चारा ने एक जगह इकट्ठिया कीता और ए उपदेश कीता, ए जाता पाता इंसान दिया बनाईया हैं, सानू सारे नु बनान वाला एक परमेश्वर है, आओ फिर एक जगह बह के उसका सिमरन करिए। तन गुरु नानक साहब का अवतार होया, देवी देवतिया अपछरा खुशी दे गीत गाए, आओ फिर इस खुशी दे मौके आपा भी तन गुरु नानक साहब की पवित्र मिठी याद विच ए शब्द गा के रसना पवित्र करी।

कबहू ना डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटिए, जुलम नूं देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीयां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने, दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते इह जुलमी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। अज जिहड़े सिंघ पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच इक 18 साल दा नौजवान, बुढ़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुलमी राजा सिंघां ते कहर टांदा है, मां दा दर्द उठिया, रहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई, मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही उनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं, ते असी उनू छड़ देवांगे, केड़ा है ओ सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए, असी तेनू छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहिंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वल तक, मेरे चेहरे वल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा, कौन कहिंदा है। ओ सामने तेरी अम्मा खलोती है, वो कहती है नहीं नहीं वो मेरी मां नहीं है। अब तक लो सिखी किन्नी प्यारी है सिख नूं, वो मेरी मां नहीं, हो सकता है उदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर वो सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मावां इंज सिदकों डोलदियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक वारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ये तेनू छड़ देणगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, याद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका, अजे बहुते दिन नहीं होए किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नूं सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघां दियां मावां कदों सिदकों डोलदियां ने, ओह ते आखदियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नूं तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जिहियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लकोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तरदे जकारे निकल रहे ने।

धर्म की खातर अपने पुत्र नूं वार के टुर गई है। किमें चाह है सिंघां नूं सहेतियां दा, इन्हां नूं मौत कोलों डर नहीं आंदा? नहीं ओए, इन्हां नूं मौत कोलों डर नहीं आंदा, सगों मौत इन्हां कोलों डरदी। दरबार सजिया है, कलगीधर महाराज तख्त ते बैठे ने, पिछे बैठी एक माई रोई जांदी। सतगुरां ने इसनूं कोल बुलाया, क्यों बई क्यों रोंदी है, तैनू की गल है, केड़ा दुख है? महाराज, मेरा पति ते मेरे दो पुत्र जंग विच शहीद हो गए सन। ओ समा मैनू अजे तक याद है, जदों तुहाडा स्नेह साडे घर तक पुजा सी कि मैदाने जंग विच जाना है। मेरे पति ने तिन्ना ही पुत्रां नूं कोल बिठाया ते आखिया, बच्चिओ अज ओ समा आ गया है, आपां कुरबानी दे के कलगीधर पातशाह दे सुपुत्र होण दा सबूत देईए। बच्चिओ, मैदाने जंग विच जा के कदम पछा नहीं पुटने, अगे होना है। जदों मैं ये खबरां सुनांगा ना कि कलगीधर दी जित होई है, मेरे बच्चे बेशक शहीद होए ने, ते मेरा फकर नाल सिर उच्चा हो जाएगा, मैं माण महसूस करांगा। इन्हीं गल आख के ये माता फिर रोण लग गई। कलगीधर आखन लगे, सिंघणीए, तू पंजां ककारां दी त्यार पुर त्यार सिंघणी हो के शहीद पति ते पुत्रां दी खातर रोंदी है, सोभा नहीं देंदा। ना महाराज, ऐ गल नहीं, माता आख रही है, ना महाराज, ऐ गल नहीं। हजार वार इस धरती ते आवां, हजार वार तेरी शान दी खातर पति ते पुत्रां नूं बाहर जावां, कौन मरनों डरदा है? रोना इस गल दा है, जदों मेरा पति ते पुत्र घरों जंग वास्ते टुरन लगे सन ना, ते एक मेरा पुत्र बीमार हो गया है, जो अजे तक बीमारी नाल मंजे ते पिया है। मैनू डर रहिंदा है किते बीमारी नाल ही काल वस ना हो जावे। महाराज, मेरे पुत्र नूं ठीक कर दिओ, तेरे एक इशारे ते मैं अपने पुत्र नूं नाल लै के मैदाने जंग विच जूझ जावां। महाराज सुन के हैरान होए, कलगीधर चमत्कार विच यह इतिहास लिखिया है, अज जो तुसीं इस कैसट विच सरवण कर रहे हो। तन तन है सिंघणीए सिदक तेरा, भले जगत दी खातर आप मोई। तन है सिंघणीए, तू अपने पति ते पुत्रां नूं जीवन मुक्त करवा लिया, फिक्र ना कर, तेरा पुत्र बीमारी नाल नहीं मरेगा, ना कर फिक्र। गरीबां ते मजलूमां दी खातर सरबत दे भले लई जंग विच जूझदा होया शहीद होएगा ते गुरु नानक दी गोद विच जा वराजेगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त होवेगा। चरणा नूं पकड़ लिया, महाराज एहो ही चाहुंदी सी, मेरा पति ते मेरे दो पुत्र तेरे इशारे ते शहीद हो के सचखंड बराजे होणगे, ते असीं क्यों बांझे रह जाइए? गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दा उपदेश कदी भी सिंघां ने नहीं भुलाया, अज तक भी सरबत दे भले लई अपना सिर अगे डा देंदे ने। एहो ही अरदास, देहे शिवा बर मोहे इह, शुभ करमन ते कब हो ना डरो, ना डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चे कर अपनी जीत करूं। ए महाराज, ए सतगुरु, ए मालक, स्रवत दे भले लई कर्म कर।

कुमार जी श्री दर्शन कुमार जी वालों पेश कीती गई है। आप समूह संगत नूं खालसा जी दे 300 साला जन्म दिवस की लख लख वधाई होवे। सतसंगियो आस है कि इन्हां दी ए सेवा आप कबूलोगे कि अगों वास्ते अरदास करोगे, महाराज बख्शिश करो। ऐसे ही तरह आप संगतां दी ए सेवा करदे रहन। शब्द गुरबाणी दियां कैसटां, इतिहास दियां कैसटां घर घर विच पहुंचांदे रहन।

स्वाति बूंद दे पिछे प्या तड़पदा है आसमान वाल, मुंह खोल के ते पपियो पपिया प्या करदा है, तरले करदा है, जोदड़िया करदा है मेरे पातशाह किते स्वाति बूंद मेरे मुख विच पा देवे ते मैं तृप्त हो जाऊं। सब आंदे ने प्यारिया किते एदां दी प्रीत कर लै, एदां दा स्नेह कर लै, एदां दे गुरु नाल प्यार पा लै, फिर ते तेरे जीवन दी गल बन सकदी है, नहीं ते तेरा जीवन अधूरा है।

सह उपदेश करते ने प्यारे अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारिया निंदका पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गियां नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला रहा, अहंकारिया नू पिठ दे दिती मुख नहीं लाया। जिन्ना नाम जपया सिमरन कीता भावें कोई वड्डा है भावें कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालिया नू नाम जपन वालिया नू सेवा करन वालिया नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना कीजै शरण परी जाए, हंकार ना कर प्यारे अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उदी शरण विच आ जाए।

साहब फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है। एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया, पाछा तू मेरे ते कृपा कर, किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच हजूर।

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहिंदे ने

साहब जी रचना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह बयान करदे होए अपने रचना तो कृपा करदे ने ते आंदे ने

एटी प्यास है तेरे दीदार दी, एटी आस है तेरे दीदार दी, निरय मार्का कर कृपा मेरे दे। को ऐसा संत मोको फिर है मिला, कोई भाई गुरुदा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरुदेव प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा विच तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंदे ने मन ऐसा न हो करे, ऐसी प्रीत कर लै जिवें मछली ने पानी नाल कर ली, चातक ने पबीए ने स्वाति बूंद नाल कर ली है, भंवरे का प्यार फुल दे नाल है सुगंधी नाल है, जेड़ी प्रीत कदी टुटे ना पातशाह मेरे मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल।

तारीफ करदे ने। आम चंगे चंगे विद्वान पुरशां ने, गुरु महाराज ने भी धरती नूं माता कहा है। धरती बड़ी चंगे सुभा दी है। भाई साहब कहंदे ने इदां दा सुभा बना लै।

अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के विच दर्ज है।

संसार अमृत दी एक बगीची है जो उस पूर्ण परमात्मा ने बनाई है। जिवें एक पौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दिया खिड़िया पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिवें कोई पंछी अपने खंभा नाल हवा नूं उलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें ओ गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाओ नूं अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंडल विच हुलारा दे के प्रभु चरणा विच उड़ारी लांदा है। उस गुरमुख दी उस अडोल अफुर अवस्था विच

परमेश्वर का रूप नहीं समझता। इसे वास्ते ये लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होंदे हैं। इसे वास्ते इंसान इंसान दे नाल नफरत करता है। कबीर साहब कह रहे हैं, अगर पूरा गुरु मिल जाए वो इन्हों गलां दी सोझी करांदा है कि ऐ इंसान इस संसार परमेश्वर का बनाया होया है, ओदे बनाए हो जीवा नाल प्यार कर, कोई भी बेगाना नहीं। पर इन्हां गल्लां दा उदों पता लगदा है जदों अंतर जोत राम प्रगासा, जदों अंदर राम नाम दी जोत जग जाए। पर ये जोत किस विरले दे अंदर जगदी है, ते कबीर साहब ने कह दिता, जानी जानी रे राजा राम की कहानी। मैं हुण इस कहानी नू जान ले है, इस सारा संसार परमेश्वर दा बनाया होया है, इसे वास्ते ते मैनू कोई बेगाना नजर नहीं आंदा।

कृपा की थी। ज्ञान अंजन, अंजन कहंदे ने सुरमा, गुरु ने ज्ञान दा ऐसा सुरमा दिता कि मैनू इस गल दी सोझी हो गई, राम नाम तो बगैर जीवन

तृष्णा रूपी जल सूख गया, मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है यह सारिया भुखा तृष्णावां खत्म कर देंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती है। हर इंसान भज रहा, जिद को एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्होंने तसली नहीं, कुछ होर चाहता। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता। हर इंसान भज रहे है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे। सुख बहुती माया विच भी

क्योंकि बाणी गुरु देंदा है। इसे करके सतगुरा ने इंसान नु कहा किसे बेतारी दे पिछे ना लगो, बाणी नाल जुड़ो, क्योंकि बाणी परमेश्वर दी है। जो परमेश्वर कहंदे गुरु ओहो ही उपदेश करदा है, ते गुरु कहंदे तुसी मैनू परमेश्वर ना कहो, मैं भी परमेश्वर दा भेजिया आया, मैं ते परमेश्वर दा सुनेहा तुहानू देना है, ते तुसी भी परमेश्वर नाल जुड़ो। ए बाणी मेरी नहीं, ए परमेश्वर दी बाणी है। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान विलालो। जेड़ा इंसान, जेड़ा पीर पैगंबर अपने नाल जोड़े कि सब कुछ मैं हां, मैं परमेश्वर हां, समझो वो परमेश्वर तू भुलिया होया। तो जेड़ा परमेश्वर नाल जोड़े असल विच, समझो ये परमेश्वर नाल जुड़िया होया है, क्योंकि ये परमेश्वर नाल जोड़ रहे हैं। ते सतगुरु जी कहंदे ने ए देवी देवते अवतार पीर पैगंबर सारियां नूं एक परमेश्वर भेजण वाला है, एक अल्लाह एक वाहिगुरु संसार ते भेजण वाला है, इस करके उहदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है तां परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी फरमांदे हैं

हजार सूरज होवे सौ चंद्रमा होवे पर जे गुरु नहीं मिलिया ता इस चाननी दा क्या फायदा जे मन दे विच ज्ञान नहीं मन विच अज्ञान है।

साहब जी फरमांदे हन कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभना होए ज्ञान का बद्दा मन रहे। जिवें पानी घड़े विच टिक जांदा है इसे तरह मन गुरु दे ज्ञान दे नाल टिक जांदा है और ज्ञान गुरु तो बगैर नहीं होंदा।

परमेश्वर दी कहानी दा पता नहीं लगदा। गुरु परमेश्वर दी कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जिहड़े गुरु दा उपदेश सुनदे ने ओ फिर इस कहानी नूं जान लैंदे ने कि सारे विच

जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू ले, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। पावे उन्हें माया तेनू बहुती मेनू थोड़ी दिती, पर गए थे आप कट्टे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए, और झगड़ा होंदा भी अक्सर देखते हैं। देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्हां नूं कोई सेवा दा चाह, बहुत घट होंदे हन सेवा वाले, बहुते ते अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं हुंदी, सेवा ते मन हुंदी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत, पर माया पिछे लड़ पए। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होवेगा। पानी विच रह के, पानी दे विच रहन वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता, उसनों भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा, ठीक है भरा, जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रवेगी, तेरी भी मौत होवेगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच भटकदा भटकदा एक दिन उसे जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा। मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनू गोते दे दे के मारांगा, और इस गल का बदला लवांगा कि तू मैनू श्राप दिता है। ने भगत पर माया विच आ गई, और माया ने दोनों नू भगती दे थां तू थले सुट दिता। समा आया, दोनों दी मौत हुई, वड्डा मस्त हाथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नूं गुरबाणी विच भी साहिब जी बयान करदे हन, राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कढ़ निस्तारे। गज पत पार उतारे अनेकां शब्दां विच इस शाखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा है। एक भरा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और वो समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने, यह जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुंबदे आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी, ए ज्यों ज्यों अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिले, और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया, और अगे एदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनी तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले, और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू कीता। पहला ते हाथी ने परवाह ना कीती, पानी पी के वापस मुड़न लगा, पिछे नहीं मुड़िया जांदा, ते हाथी समझ गया मैनू कोई पकड़न वाला तगड़ा जीव है, इसने जोर लाया। कुछ पिछा आया, पर फिर तंदुए दा योर चलिया, ते हाथी नूं खिच के ओ पानी दे

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार कहा। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उसनू होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन अंतरयामी भगवान कृष्ण। दूरों सुदामे नू देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाईसा फरमान करदे हन।

कंचन नारी में जियो लोबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर ओ गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जरा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना, ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इना विशे विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा सी तेनू भुलाया होया।

लाया। ये जिहड़ा साडा मन है अनरसां विच लपटिया होया, घर मंदर घोड़े खुशी, कोई घर मंगन लग पैंदा, कोई खुशियां मंगदा, कोई कहिंदा घर अंदर घोड़े होण, सुख दा सारा साजो समान होवे। कदी किसे ने परमात्मा नूं भी मंगिया? हे परमात्मा, जिथे सारे सुख होण उथे तेरी याद भी होवे। करो रसना नूं पवित्र गज के आखो सतनाम। घर मंदर घोड़े खुशी मन अनरस लाया, ऐ जिहड़ा मन है इनू अनरसा विच असी लपटाया होया, अनरसा दे विच लाया होया। हे परमात्मा, तेरे नाम दा असी कदी स्वाद नहीं चखिया, अनरस ते असी बहुत चखदे पर सिमरन दा स्वाद असी चखण दी कोशिश नहीं कीती। अगे साहिब

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर कृपा बख्श। तुसी करो कृपा साडे अवगुण बख्श के, ते सानू अपने चरणां नाल ला लो। कर कृपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां।

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल टंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कुल कोई टंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनू अपने बस कर ला, मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं है।

हे माधव, माया दे मालिक, माया दे साईं, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे, साधु संगत हुण ध्यान देण। हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे हां, सतगुरु कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

करेंगे। हम पापी तुम पाप खंड। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं? क्योंकि असी पाप करन वाले हैं, तुसी पापां दा खंडन नाश करन वाले हैं। किवें चंगे हो गए? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना। निको ठाकर दे सामने नाल चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जांदा। हम ऐसे तू ऐसा। आओगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे किते मन च वस जाए जीवन बदल जांदा है, जीवन पलट जांदा है। हुण सतगुरु ख्याल देंदे हुए कह रहे ने

तुम समसर नहीं दयाल मोह समसर पापी। भगत कबीर जी कहते हैं, हे मेरे माधो असी के हो जाए ते आप के हो जाए। कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी तुम समसर नहीं दयाल। समसर कहते ने तेरे वर्गा, तेरे वर्गा कोई दयालु नहीं है कृपालु नहीं है। मोह समसर पापी ते मेरे वर्गा कोई पापी नहीं है। तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं, मेरे वर्गा पापी कोई नहीं, ते मेरे वर्गे अवगुण हारे दे ते अवगुण आप ही बख्श सकते हो।

मैं अवगुण हारा ते आप उपकारी हो, मैं अवगुण करी जाना आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी है, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है,

हे रमैया मैं तेरा बारक हां, काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है, भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा दी याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल इह कह सके कि मैं तेरा बारक हां, ते अपने बारक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बारक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे को अवगुण बख्शा लेने। इसलिए भाई आओ आप उस मालिक अगे इस तरह बेनती करिए, गोविंद हम ऐसे अपराधी, गोविंद हम

एक खिन लेना हर को नाम गोविंद, हम ऐसे अपराधी। कैसा अपराध है, रात पैंदी है सौ जाने है, दिन चढ़दे उठ के कमा कारण तुर पैने है, ते परमात्मा दा नाम कदों जपांगे। रात जो सोवे दिन करे काम, एक खिन लेना हर को नाम, एक खिन मात्र भी तू परमात्मा दा नाम नहीं जपदा, तेरे अंदर गुण केड़ा होया।

नाम तो बिना भाई तेरा क्यों छुटकारा हो सकता है, ते नाम मिलता कितों है अख्या जपन वालियां की संगत विच तेनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां की संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा, साच नाम आधार। जिन्हानू नाम का आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उच्चारण करो श्री इस लई हजूर बख्शिश करते हैं कि यह गुरु की शरण विचों मिल सकता है। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहिंदे ने घड़े ने आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकता, आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। ओ जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसे तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

अकाल मूर्त अजूनी सैभंग और प्रसाद जप आप सच युगात सच है भी सच नानक कोशी भी सच चक्र के निर्वर्ण जात हर पात निहिंजे रूप रंग हरी पीठ भूकर सत्य है अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित पूज के हिंजय भूत इंद्र इंद्राण शाहु शाहन गणिजय फिर भवन में ही सुरनारासुर नीत नीत मंडन कह तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समझ सतपुरे आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी और न सूझ दू जी ठार आर पर तो द्वारी लिखा छोड़िया लिखा छूट है हम निर्गुण ले हो वारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सब नाम आवारी नानक दास संत पाछा करू राख लियु ए बारी सतगुर हुई दयाल का श्रद्धा पूरिया सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल का दुख न जानिया सतगुर हुई दयाल का हर रंग मानिया सतगुर हुई दयाल का जम का डर के हा सतगुर हुई दयाल सा सद ही सुख दयाल सतगुर हुई दयाल सा नौ निध पाइया सतगुर हुई दयाल

सुरठ महला पंजवां आ गया सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता आ गया सुख।

जगत गुरु बाबा धन धन साहिब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जगत दे कल्याण करता मनुखता दे हामी दुखियां ते गरीबां नूं हिकड़ी नाल लाउण वाले संसार दी कल्याण करन वाले सतगुरु सच्चे पातशाह सोरठ महला पहला विच कृपा करदे ने।

तू दाता है, तेरे कोल सारियां दाता ने, तू दाता दा मुजस्मा है। पर सोचना तो मैं है भाई, मैं मंगा की हे मालिक मैनू ओ दात दे जड़ी सदा थिर रहे। करता तू मेरा जजुमान, एक दखना हो तै पै मांगू। देवो अपना नाम, मैनू अपना नाम दे। ता नाम किदे कोलू मंग रहे ने, जेड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया, जेड़ा घट घट रव रहा बनवारी। ता साहब सच्चे पातशाह दी महान पवित्र बाणी दा ए पवित्र

खट खट रव रहा बनवारी। कहंदे ने दुनिया दे मुसलमान काबे दी ज़ियारत करन तुरे जा रहे सन, ओदां दे कपड़े पहने हुए। कबीर जी कहंदे ने मैं भी तुर पिया भई शायद परमात्मा रब उत्थे मिल जावे। कबीर हज काबे हों जाए था, कहंदे ने अगे मैनू खुदा मिल पिया ते खुदा ने मेरे नाल झगड़ा कीता। कहन लगे कबीर किथे चले हैं? मैं क्या मालिक मैं तां तैनू मिलन चलिया। तां कहंदे ने नाराज हो गए मेरे नाल झगड़ा कीता भई लोगां दी तां मत मारी गई है तेरी भी मारी।

ब्रह्मा एदियां पत्तियां विच वसदा है। ब्रह्म पापी बिस्न डारी विष्णु भगवान डालियां च वसदा है। फूल शंकर दे ओ भोलेनाथ शंकर फूलां विच वसदा है।

0: चपटी हो जैसे माँ राजू बाबा आई पड़े सन। मैं पूछा क्या लगे बड़ी लंबी कथा माता नुआंदी है।
1: हाँ सुन, हरनाक्ष नाम का एक बड़ा शक्तिशाली राजा सी। उन्हें भगवान की भक्ति करके एक वरदान लिया कि ना वो दिने मरेगा ना राती मरेगा, ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा, ना मनुख कोलो ना किसी जानवर कोलो। भगवान का वरदान लेके वो आप ही भगवान बन बैठा। उस राजे का एक पुत्र सी प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता नु भगवान मनन तो इनकार कर दिता। क्रोध विच आ के पिता ने पुत्र नु तपते थम नाल जफी पान दा हुक्म दिता। ते प्रहलाद दे दिल विचों आवाज आई, पा लै तपते थमा नु जफिया आपे तेनु राम रख लो। प्रहलाद ने थम नाल जफी पा ली पर उहदा वाल भी विंगा ना होया। उस विच आ के राजा ने तलवार कट ली ते थम पाट गया।
0: मैं भी प्रार्थना की मां भगवान दा जाप करांगी।
2: मेरी महिला मेरी औलाद पुठे पाठ पढ़ाए जा रहे। अज तो बात फिर करी ऐसी गल की थी।

बैठे दो घड़िया वास्ते, पर भाई साहब लिखते ने आए संत ब्राह्मणे, कीर्तन होवा रहन सबाई।

काल तेरे काज न बिखे जंजाल। इष्ट मीत जान सब चले हर हर नाम संग तेरे चले। राम नाम गुण गाय ले मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत जम